0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Man and Well Woman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
2: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
3: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय।
4: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
5: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
4: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
1: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Man and Well Woman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
1: I love you, Dr. Noini.
2: ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं। उम्र देखिए तुम कितनी। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता।
3: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे, तब तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते रहोगे।
4: Watch

0: Only on Utsav Plus.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favourite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
2: Gold is trading at £98.25 per gram. All right, let's get another listen to this trio, shall we?
3: ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं आपको 45 लाख या 50 लाख दिलवा देती। फिर आपको अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी?
4: जो दुर्गेश्वरी के सामने गुनाह करेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए, यही न्याय है।
5: ये मत समझना कि साबुन पर चाबी की छाप लेना सिर्फ तुम्हें ही आता है। जब तुमने मेरी अलमारी की चाबी की छाप ली तो ठीक आधे घंटे के बाद मैंने भी तुम्हारी चाबी की छाप ली।
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लो बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव